वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

केशव तव सुप्रभातम् यत्सामजी जनित योग वियोग दुःखता तप्यमान परिचिन्तित चक्रवाकः मित्रोदयं सम

मुनिवृन्दवन्द्यो कुले परन्त्य जलदे कृतनित्यवासो श्रीसौम्य केशव चरणौ शरणं प्रपद्ये वालीशसूनु समश्रिचि

0: वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः।
1: प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। अद्य सहायकरूपेण मया सह मम पतिः विठ्ठलमहोदयः अस्ति। अद्य क्रियापदपठनम् अग्रे नयामः। क्रियापदस्य मूलं धातुः, यथा पठति इत्यस्य क्रियापदस्य मूलं पठ इति धातुः। हमने कल सीखा है क्रियापद के बारे में, कल कुछ सीखा था, आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्रियापद का मूल होता है, उसे बोलते हैं धातु। पठति अत्र क्रियापदस्य मूलं पठ इति धातुः। धातवः त्रिविधाः सन्ति। धातु के तीन प्रकार है, परस्मैपदिनः, आत्मनेपदिनः, उभयपदिनः च। पठ, लिख, क्रीड इत्यादयः धातवः परस्मैपदिनः। वन्द, लभ, भाष इत्यादयः धातवः आत्मनेपदिनः। परस्मैपदीनां धातूनां लट् लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनस्य अन्ते ति इति श्रूयते, यथा पठति, लिखति, क्रीडति। क्या कह, परस्मैपदी धातु जो होता है उसका अगर वर्तमान काल रूप प्रथम पुरुष एकवचन देखते हैं तो उसके अंत में ति इति श्रुण्मः, यथा पठति, लिखति, क्रीडति, ती ती ती, अन्ते किम् अस्ति, ती अस्ति। तर्हि एते परस्मैपदी धातवः। आत्मनेपदीनां धातूनां लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य अन्ते ते इति श्रूयते, यथा वन्दते, लभते, भाषते। तो क्या हुआ, आत्मनेपदी धातु जो है उनके वर्तमान काल के रूप में प्रथम पुरुष एकवचन के रूप में अन्ते ते इति शब्द भवति, यथा वन्दते, लभते, भाषते। तो ये धातु हो गए आत्मनेपदी। अंत में ती होता है तो परस्मैपदी, अंत में ते होता है तो आत्मनेपदी। इतना अब ध्यान में रखेंगे। उभयपदी नाम धातु नाम लट् लकारस्य प्रथम पुरुष एकवचनस्य अन्ते ती ते एतद् उभयम् अपि श्रूयते, जैसे करोति, कुरुते। अत्र कृ इति धातुः उभयपदी। तो उभयपदी क्या है, उभयपदी धातु जो है उनका प्रथम पुरुष एकवचन वर्तमान काल रूप देखते हैं तो उनके अंत में ती आता है और ते भी आता है। एक उदाहरण है क्रू इति धातुः। क्रू का रूप होता है, परस्मैपदी रूप होता है करोति, आत्मनेपदी रूप होता है कुरुते। समझ में आया। तो बालकः स्नानं करोति, ये हो गया परस्मैपदी वाक्य। बालकः स्नानं कुरुते इति वदामः चेत् हो गया आत्मनेपदी वाक्य। तथैव याचति, याचते इति अपि उभयपदी धातुः। कानिचन वाक्यानि पश्यामः। अहं परस्मैपदी धातोः वाक्यं वदामि, महोदयः समान अर्थस्य आत्मनेपदी धातोः वाक्यं वदति। शृण्वन्तु। बालकः संस्कृतं जानाति।
2: बालकः संस्कृतं जानीते।
1: बालकः संस्कृतं वदति।
2: बालकः संस्कृतं भाषते।
1: बालिका देवं नमति।
2: बालिका देवं वन्दते।
1: माता पाकं करोति।
2: माता पाकं कुरुते।
1: तो समझ में आया, ती अंत में आया तो परस्मैपदी, ते अंत में आया तो आत्मनेपदी धातु हो गए। अच्छा, जैसे परस्मैपदी के तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और लकार, वैसे ही आत्मनेपदी धातु के भी तीन पुरुष, तीन वचन और भिन्न भिन्न यानी 10 लकार होते हैं। उदाहरणार्थम प्रथम पुरुष रूपाणी भवन्ति नमति, नमतः, नमन्ति। मध्यम पुरुष रूपाणि भवन्ति नमसि, नमथः, नमथ। उत्तम पुरुष रूपाणि भवन्ति नमामि, नमावः, नमामः। वैसे ही वंद धातु के प्रथम पुरुष रूपाणि भवन्ति वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते। मध्यम पुरुष रूपाणि भवन्ति वन्दसे, वन्देथे, वन्दध्वे। उत्तम पुरुष रूपाणि भवन्ति वन्दे, वन्दावहे, वन्दामहे। अभ्यासार्थं कानिचन वाक्यानि वदामः, शृण्वन्तु। अहं पुनः परस्मैपदीनां धातूनां वाक्यानि वदामि, महोदयः आत्मनेपदीनां धातूनां वाक्यानि वदति। बालकः नमति।
2: बालकः वन्दते।
1: बालकौ नमतः।
2: बालकौ वन्देते।
1: बालकाः नमन्ति,
2: बालकाः वन्दन्ते।
1: उत्तमम्। एषः प्रथमपुरुषः। इदानीं वदति इति क्रियापदम्। बालिका वदति,
2: बालिका भाषते,
1: बालिके वदतः,
2: बालिके भाषेते,
1: बालिकाः वदन्ति,
2: बालिकाः भाषन्ते।
1: उत्तमम्। तर्हि प्रथमपुरुषं ज्ञातवन्तः खलु। इदानीं मध्यमपुरुषस्य रूपाणि। त्वं नमसि,
2: त्वं वन्दसे।
1: युवां नमथः,
2: युवां वन्देथे।
1: यूयं नमथ,
2: यूयं वन्दध्वे।
1: उत्तमम्। इदानीं उत्तमपुरुषस्य वाक्यानि। अहं नमामि,
2: अहं वन्दे।
1: आवां नमावः,
2: आवां वन्दावहे।
1: वयं नमामः,
2: वयं वन्दामहे।
1: तो इस तरह हमने आज परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातु के बारे में थोड़ा सा जान लिया। हम जब बोलते हैं ना वंदे मातरम, तो वहाँ वंदे इति क्रियापदम अस्ति, तस्य अर्थः भवति अहम मातरम वंदे, अहम भारत मातरम वंदे। तो ये आत्मनेपदी वैसे ही वयम भारत मातरम वंदामहे, तो वंदामहे अत्र आत्मनेपदी बहुवचन हो गया। तो वंदे मातरम तो हम सब जानते हैं, तो वहाँ जो रूप है क्रियापद का वो है वंदे। तो वंदे आत्मनेपदी धातु, वंद उत्तम पुरुष, एकवचनम लट लकार इति स्मरन्तु। अस्तु, इदानीम् एकं श्लोकं वदामः। वसुदेवसुतं देवं,
2: वसुदेवसुतं देवं,
1: कंसचाणूरमर्दनं,
2: कंसचाणूरमर्दनं।

0: मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापार दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के साथ संबंध और मजबूत करने का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया। ऊर्जा से जुड़ी बुनियादी व्यवस्था को ईरान की चौकियों से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 11वां आयुर्वेद दिवस आज देश भर में मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय रोवर्स ने पुरुष सिंगल्स और डबल्स का स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक चुनौतियों, जलवायु संबंधी आपदाओं और बहुपक्षीय व्यवस्था पर बढ़ते दबाव से निपटने के लिए विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच अधिक सहयोग की अपील की है। श्री जयशंकर कल अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक से अलग विकासशील और अल्प विकसित देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिति में बढ़ते संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार पर दबाव, निवेश के बिखरे हुए प्रभाव, बढ़ते ऋण के जोखिम और विकास के लिए अपर्याप्त वित्त की समस्याएं देखी जा रही हैं।
1: ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एकजुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है। साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
0: श्री जयशंकर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले बदलावों का सही ढंग से प्रबंधन करने के महत्व पर भी बल दिया, ताकि विभाजन को रोका जा सके और विकासशील तथा अल्प विकसित देशों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। डॉक्टर जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तयानी से भी मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी बातचीत खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे और यूक्रेन संघर्ष पर केंद्रित थी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता अच्छी प्रगति पर है और दोनों देशों का दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन तक बातचीत पूरी करने का लक्ष्य है। श्री कार्नी ने कहा कि उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय कनाडा की यात्रा करेंगे, हालांकि इसकी सटीक तारीख अभी तय नहीं हुई है। G20 सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को अमरीका के मियामी में होगा। श्री कार्नी ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे अगले दशक में अमेरिका के अलावा अन्य देशों के साथ कनाडा का व्यापार दोगुना करना चाहते हैं। उन्होंने भारत को उस व्यापक प्रयास का हिस्सा बनाया है जिसका उद्देश्य कनाडा की अमेरिका पर निर्भरता कम करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान पश्चिम एशियाई देशों पर हो रहे कई हमलों को देखते हुए पश्चिम एशिया में ऊर्जा से जुड़े अवसंरचना को ईरानी सीमा क्षेत्रों से दूर ले जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा परिषद और अरब नेताओं के साथ बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पड़ोसी देशों में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों ने इस क्षेत्र में ऊर्जा संबंधी अवसंरचना को बदलने की आवश्यकता को उजागर किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमरीका ने आर्थिक कदमों के माध्यम से ईरान को वित्तीय रूप से अलग थलग कर दिया। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि एक समय ऐसा आ सकता है जब स्थिति को सुलझाने में बहुत देर हो जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में ऐसे एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाने की योजना है जहां व्यवसायों को विभिन्न सरकारी विभागों तथा एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सके। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात को सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी।
3: 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। इसमें कॉमर्स फैकल्टी के 6,713 और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फैकल्टी के 1,102 विद्यार्थी शामिल हैं। समारोह के दौरान स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर द वर्ल्ड रिन्यूअल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति यूथ फॉर विकसित भारत अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहेंगे। महेश सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, बड़ौदा।
0: इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने कल गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
4: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने बताया कि ये समारोह आयुर्वेद से जुड़े प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा और ज्ञान के आदान प्रदान तथा व्यापक जुड़ाव के लिए मंच प्रदान करेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: 11वें आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन नागपुर के कविवर्य सुरेश भट्ट सभागार में आज सुबह 9 से 10 के बीच होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के कुलपति डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि इस वर्ष आयुर्वेद दिवस में प्रमाण, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से आयुर्वेद को सशक्त बनाने के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। जामनगर स्थित ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की यूनिट हेड डॉक्टर गीता कृष्णन पिल्लई शाश्वत से विश्वास तक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद और 2047 की ओर मार्ग इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक ज्ञान से वैश्विक नेतृत्व तक आयुष विजन 2030 रिपोर्ट, भारत में आयुष संबंधित आविष्कारों पर स्थिति रिपोर्ट CCRAS अग्नि इस आकलन स्केल वेब पोर्टल का भी शुभारंभ होगा। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
0: आयुष मंत्री प्रताप जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद बेहतर और स्वस्थ जीवन का आधार है।
6: हमारे आयुष मंत्रालय ने जो थीम चुनी है वो है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद, यानी कि अगर बुढ़ापे में भी अगर हम अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, जिंदगी हम वहाँ पर जीना चाहते हैं, तो अभी से आयुर्वेद और आयुष को, योगा को अपनाइए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को भारत की सौर क्रांति में साकार किया गया है।
7: भारत की सौर क्रांति गुजरात के राज्य स्तरीय प्रयासों से शुरू होकर आज एक विशाल राष्ट्रीय अभियान बन चुकी है, जो देश को स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक अवसर और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट की स्थापित सौर क्षमता से आगे बढ़ते हुए भारत वर्ष 2026 तक लगभग 165 गीगावाट की सौर क्षमता हासिल कर चुका है। सौर ऊर्जा को हर घर तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 51 लाख से अधिक परिवार जुड़ चुके हैं और 14.8 गीगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं। इसने जहां लाखों परिवारों को बिजली बिल शून्य कर दिया है, वहीं युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के भी नए अवसर सृजित किए हैं। इस योजना के माध्यम से जमीनी स्तर पर आ रहे बदलाव और कौशल विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की एक लाभार्थी की प्रेरक कहानी साझा करते हुए कहा,
8: आज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का प्रभाव देश के कोने कोने में दिखने लगा है। इस योजना की वजह से गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की पायल मुजपरा के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने सूर्य पहल के माध्यम से सोलर पावर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ली और 4 महीने का सोलर पीवी टेक्नीशियन का कोर्स पूरा किया। वो आसपास के जिलों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का काम करती है और इससे उन्हें हर महीने हजारों रुपए की आय होती है।
7: सुरेंद्रनगर के निवासी दिनेश भाई मकवाना ने बताया कि कैसे इस योजना ने उनके जीवन को सुगम बनाया है।
9: मैंने पास पीजीवीसीएल का बिजली कनेक्शन था, लेकिन उसके बाद पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू होने पर मैंने उसके आवेदन करके अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा लिया। इसमें सरकार की तरफ से मुझे 78,000 रुपए की सब्सिडी भी मिली।
7: आज प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर इंस्टॉलेशन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, बिहार, झारखंड, आंतरिक कर्नाटका, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों के पास पदक जीतने के कई अवसर होंगे। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और मीराबाई चानू आज भारत के अभियान का नेतृत्व कर रही हैं। मनु भाकर ने निशानेबाजी में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारोत्तोलक मीराबाई चानू महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में भाग लेंगी। नौकायन में भारत की पुरुष टीम ने सिंगल्स और टीम स्कल्स इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
10: धन्यवाद प्रियंका। भारतीय बेटियों की स्वर्णिम उड़ान, एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा देश के लिए पहला स्वर्ण पदक लाने की खबर को आज दैनिक जागरण और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जापान में इस टूर्नामेंट में अब तक देश के कुल 7 में से 4 पदक महिलाओं के नाम है। अमर उजाला की खबर है, मोबाइल में इंटरनेट नहीं बल्कि सिर्फ वॉइस कॉल और मैसेज की सुविधा चाहने वालों के लिए अच्छी खबर। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार कंपनियों से मोबाइल रिचार्ज में बिना डेटा वाले सस्ते प्लान बढ़ाने को अनिवार्य किया। अब 30 दिन की वैधता लागू की जाएगी। नवभारत टाइम्स लिखता है, मोबाइल स्क्रीन गार्ड यानी स्क्रीन प्रोटेक्टर अब बिना गुणवत्ता जांच के नहीं बिकेंगे। नया नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू पर लाल हरा बिंदु अनिवार्य, देखते ही पता चलेगा कि उत्पाद शाकाहारी है या नहीं। दैनिक भास्कर के अनुसार केंद्र सरकार ने इस संबंध में जारी की अधिसूचना।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापारिक दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया। ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी बुनियादी व्यवस्था को ईरान की चौकियों से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 11वां आयुर्वेद दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय रोवर्स ने पुरुष सिंगल्स और डबल्स स्कल्स स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: 90.4 FM वेणुधुनी KLE कंसू पे आप ट्यून है और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM KLE कंसू। पहिल्यांदाच हुबळीमध्ये नवीन व युवा उद्योजक स्टार्टअप व्यावसायिक तसेच स्वयंरोजगार सुरू करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ही एक सुवर्ण संधी। तुमच्या कल्पनांचे उत्पन्नामध्ये रूपांतर करा। तुमच्या स्वप्नातील व्यवसायाचा भक्कम पाया घालण्यासाठी आणि उद्योजकीय कौशल्य विकसित करण्यासाठी विशेष एक दिवसीय स्किल डेव्हलपमेंट कार्यशाळा Empower 365 कल्पनेपासून कंपनीपर्यंत रविवार दिनांक 18 ऑक्टोबर 2026 रोजी हुबळी येथे। यशस्वी आणि फायदे उद्योजक होण्यासाठी आवश्यक कौशल्य विकसित करण्याची संधी गमवू नका। आजच आपले नाव नोंदवा। नोंदणीसाठी संपर्क 9513519666। गिकोना सक्सेस स्ट्रॅटेजी।
12: माँ बनने में हो रही है देर, इंतजार है खुशखबरी का। देयर इज वन नेम यू कैन ट्रस्ट, KLE फर्टिलिटी सेंटर विद साइंस सोल एंड सेंसिटिविटी। जिंदगी को दो नई शुरुआत KLE IVF के साथ। आज ही विजिट करें KLE फर्टिलिटी सेंटर, OPD नंबर 97, शरावती सेकंड फ्लोर, KLE's डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल एंड MRC बेगावी। फोन नंबर 08312551530 एंड 2473777 एक्सटेंशन 1530।

0: नमस्कार, आप सुन रहे वेणुधोनी 90.4 FM KLE कनसु। आज के इस विशेष प्रोग्राम में मनीषा आपका स्वागत करती है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो है फोन एडिक्शन के बारे में। आज हम जान लेंगे क्या होता है ये और किस तेजी से ये बढ़ रहा है, इसके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या परिणाम होता है, इन सभी के बारे में आज के शो में चर्चा होगी। और इसके ऊपर मार्गदर्शन करने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर नितिन आनंद, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस निमहांस बेंगलुरु में क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर है। उसी के साथ निमहांस के सर्विस फॉर हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी क्लिनिक में विशेष तज्ञ सलाहकार के रूप में कार्यरत है। ये भारत का पहला टेक्नोलॉजी डी एडिक्शन क्लिनिक है, जहाँ इंटरनेट, सोशल मीडिया, गेमिंग और जुआ की लत से जुड़ी समस्याओं के लिए विशेष उपचार और परामर्श दिया जाता है, खासकर किशोरों और युवाओं के लिए। इसके अलावा सर स्पेशलिटी ओबेसिव डिसऑर्डर क्लिनिक में भी मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और उपचार प्रदान करते हैं, जो इस प्रकार का भारत में शुरू किया गया पहला विशेष क्लिनिक है। डॉक्टर आनंद असिस्मेंट साइकोलॉजी रिसर्च एंड एप्लीकेशन डिवीजन के फैकल्टी इंचार्ज भी है, जो भारत के लिए स्वदेशी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के विकास और मानकीकरण पर कार्य करता है। सर, वेणुधुनी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: आज हम बहुत ही बर्निंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं सर, कि फोन एडिक्शन कैसे होता है, उसके बारे में सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि ये फोन या फिर मोबाइल एडिक्शन होता क्या है।
1: तो मैम, मोबाइल फोन एडिक्शन ये ऐसी एक

0: बिहेवियर एडिक्शन है जिसके लिए सभी लोग रिस्क पे हैं। अगर इसमें पूछा जाए कि कौन रिस्क पे है, तो जो जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं वो सभी रिस्क पे हैं। और रिस्क पे क्यों हैं? क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज बनाई गई हैं, जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, जैसे कि उसमें गेमिंग एप्लीकेशन है, उसमें एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन हैं, वेब सीरीज एप्लीकेशन हैं। तो जो एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, ये बनाए इसलिए जाते हैं कि ये हमको, हम इनको बार बार यूज करें। वो बना ही इसी तरीके से जाता है कि उसमें हमें बहुत रीइन्फोर्समेंट मिलता है, बहुत रिवॉर्ड मिलता है, खुशी मिलती है, एक्साइटमेंट मिलती है, सरप्राइज मिलता है, हमारा जो मूड है वो एकदम तुरंत ही बदल जाता है उसे देखने से। उसे हमें एकदम आनंद मिलता है, जो कि बाकी चीज़ों में हमें उतनी जल्दी आनंद नहीं मिलता। अगर हम कोई और कार्य करेंगे, घर पे कोई और कार्य कर रहे हैं, अगर कोई एडोलेसेंट हैं, कोई नवयुवक हैं, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं या कोई गेम्स खेल रहे हैं या अपने किसी सहपाठी के साथ या अपने किसी फ्रेंड के साथ में बात कर रहे हैं, तो उनको तुरंत इतना खुशी का आभास नहीं होगा। लेकिन जब भी वो कोई मोबाइल फोन यूज करते हैं या उसे कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो तुरंत ही हर आधे मिनट में उनको एक आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि वो डिजाइन ही इसी तरह के किए गए हैं कि उनको एकदम खुशी तुरंत ही मिल जाए। और जितनी बार उनको खुशी मिलती है, उतनी बार ये उनका दृढ़ संकल्प हो जाता है धीरे धीरे उनके मस्तिष्क में कि इसको यूज करने से हमें बहुत खुशी मिलती है, इसे हमें यूज करने से आनंद मिलता है। अच्छा। तो एक हो गया कि जो मोबाइल फोन है, जो एप्लीकेशन बनाए गए हैं, वो अडिक्ट होने के लिए ही बनाए गए हैं कंपनीज द्वारा।
1: बाप रे।
0: क्योंकि अगर वो एप्लीकेशन तभी सक्सेसफुल होंगे जब आप उस पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं।
1: करेक्ट।
0: और उसमें कई दूसरे तरह से जो हमारे अंदर खुद के अंदर कई सारे वल्नरेबिलिटी रहती है, और इसको हम हमें तब पता लगता है जब हम देखते हैं कि हम उसके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, जैसे कि एक बोलते हैं प्री ऑक्यूपेशन होना। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है एक ही मोबाइल फोन एप्लीकेशन को या स्मार्टफोन को आप काफ़ी देर तक यूज़ करते हैं और आपका, आपको अपने समय कितना बीत चुका है उसका अंदाजा चला जाता है।
1: एग्जैक्टली।
0: उसको बोलते हैं प्री ऑक्यूपेशन। कोई भी और काम कर रहे हैं लेकिन सबसे जैसे एकदम तुरंत फ्री होते हैं तो फिर आपका हाथ वही मोबाइल फोन में जाएगा, उसे आप ओपन करेंगे। तो ये एक पहला लक्षण होता है प्री ऑक्यूपेशन। दूसरा लक्षण होता है, इसे बोलते हैं विड्रॉल।
1: अच्छा।
0: विड्रॉल ऐसा होता है कि जब भी आप अपने स्मार्टफोन से दूर हैं तब आपको चिड़चिड़ापन लगता है, तब आपको थोड़ी बेचैनी लगती है, तब आपको थोड़ी घबराहट होती है, या तब आपको गुस्सा आ जाता है। चाहे तो आप ये फोन आपके पास ना हो, हो सकता है फोन की बैटरी खत्म हो गई हो, फोन का इंटरनेट का कनेक्शन खत्म हो गया हो, या किसी ने फोन आपसे घर में ले लिया हो। तो अगर ये हो रहा है तो इसका दूसरा लक्षण है, इसे बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम।
1: अच्छा।
0: और आपने देखा होगा कि बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं जिसमें कि बच्चों से जब माँ बाप ने मोबाइल ले लिया, बच्चों में तुरंत एक तीव्रता से एक गुस्सा बेचैनी आ गई, जिससे कि माँ बच्चों और पेरेंट्स के बीच में, माँ बाप के बीच में लड़ाई हुई, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जिसमें कि देखा गया है कि बच्चों ने कुछ ऐसे एक्शन ले लिए हैं जो कि बहुत घातक रहे हैं उनके लिए, उन्होंने कुछ फिजिकल वायलेंस कर दिया गया है। तो ये होता है विड्रॉल। तीसरा होता है टॉलरेंस। ये तीसरा लक्षण टॉलरेंस का मतलब होता है, पहले ही सिर्फ 5 मिनट यूज़ करने में, 10 मिनट यूज़ करने में ही आनंद मिल जाया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका समय जो है बढ़ता जा रहा है। पहले वो जो चीज़ 10 मिनट में खुशी देती थी वो 20 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, वो 1 घंटा हुआ, क्योंकि धीरे धीरे पहले खुशी का आभास आपको थोड़ी देर यूज़ करने में मिल जाया करता था, लेकिन अब उसको ज़्यादा देर तक यूज़ करना पड़ता है तब आपको संतुष्टि मिलती है। और धीरे धीरे इसी तरह टाइम जो होता है, पहले आधे घंटा भी नहीं, 10-15 मिनट से शुरू होता है धीरे धीरे कोई भी एप्लीकेशन, वो धीरे धीरे अब 1-2 घंटा 3 घंटा तक जा रहा है। एक बार जब स्टार्ट करते हैं तो रुक नहीं पाते हैं। तो तीसरा लक्षण इसको बोलते हैं टॉलरेंस। चौथा लक्षण होता है कंट्रोल करने की डिफिकल्टी। एक बार जब स्टार्ट कर दिया तो सब बोलते हैं बस 1 मिनट, 1 मिनट के बाद, बस अभी ये काम 1 मिनट के बाद करता हूं मैं। तो एक बार जब स्टार्ट किया उसके बाद कंट्रोल नहीं कर पाना उसे, उसको बोलते हैं डिफिकल्टी टू कंट्रोल, मतलब कंट्रोल करने की डिफिकल्टी। तो ये चौथा लक्षण है। पांचवा लक्षण होता है कि इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में आप जो है आपकी इम्पैक्ट हो पा रहा है, मतलब उन पर असर पड़ रहा है, जैसे कि आप अपना जो स्कूल का काम है वो टाइम पे नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं, ऑफिस का काम टाइम पे ख़त्म नहीं हो पा रहा है, परफॉर्मेंस कम होती जा रही है। इसकी वजह से आपके घर में आपके पेरेंट्स और बच्चों के बीच में रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, दोनों जो घर में जो भाई बहन है और जो अलग और फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ रिश्ते ख़राब हो रहे हैं इसकी वजह से। आप इसकी वजह से कई बार पैसे भी चुरा लेते हैं इसकी वजह से, कि उसमें से कुछ देखा आपने, वो चीज़ पसंद आ गई, अब उसे ख़रीदना है, तो उसमें तो ये बहुत सारे हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं। ये होने के बावजूद भी फिर भी आप उसको यूज़ कर रहे हैं, और कई बार अगर आप रात को खाने के बाद इसे यूज़ करते हैं तो

0: तीन चार घंटे रात को हो जाता है, एक बज गया तब सो रहे हैं, तो स्लीप भी इससे डिले हो जाती है। तो ये पांचवा, छठा होता है कि आपके जो सोशल रिलेशनशिप हैं उसमें आपकी रुचि जो है कम हो जाती है। अब आपका मन नहीं करता लोगों से बातचीत करें, क्योंकि जैसे मैंने पहला बताया, लोगों से बातचीत करें, क्या कोई फंक्शन है घर में वह जाएं, या किसी ने आपको कम्युनिटी में फंक्शन में बुलाया हुआ है अपने कॉलोनी में, वहाँ जाने का मन नहीं करता, क्योंकि वो अब रुचि लायक नहीं रहा। क्योंकि सबसे ज़्यादा रुचि, क्योंकि इतना ज़्यादा आनंद वो तो देंगे नहीं, जैसे मैंने शुरू में बताया वो एप्लीकेशन जो हैं वो ज़्यादा खुशी देते हैं आपको, तो उसमें टाइम बिताना। सातवां होता है कि जब भी आपका मूड जो है जब ख़राब हो जाए, जब चिड़चिड़ापन हो, घबराहट हो, बेचैनी हो, या किसी से कुछ मनमुटाव हो जाए, तो उसी टाइम तुरंत आप मोबाइल फ़ोन का एक्सेस करते हैं, और उस टाइम पे फिर उसको देखने के बाद आपका मूड ठीक हो जाता है। उसको बोलते हैं कि मूड मॉडिफिकेशन, आपका मूड जो है में परिवर्तन आ गया।
1: अच्छा।
0: और अपने आप मोबाइल फ़ोन को अपना मूड ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल करने लगे हैं। और आखिरी है जो आठवां लक्षण है, कि जब आप कितना, अगर कोई पूछे आप कितना टाइम बिताते हैं तो मोबाइल फ़ोन पे, तो आप हमेशा कम ही बताते हैं, क्योंकि आपको पता ही कितना टाइम बिता रहे हैं आप। तो ये आठ लक्षण हैं, इन आठ लक्षण में से अगर कोई भी पांच लक्षण अगर आपको, आपके घर वालों को, आपके दोस्तों को, और किसी को भी जिनको आप जानते हैं अगर हैं, तो उनको डिजिटल एडिक्शन लगभग तय है।
1: अच्छा, मुझे लगता है जो भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं अभी, उनमें से कुछ गिने चुने लोग होंगे जो भी एज लिमिट की वजह से शायद होंगे, मतलब एज फैक्टर की वजह से, जिनको ये लत नहीं है, या फिर जो ज़्यादा समय अपना मोबाइल पे नहीं बिताते हैं। नहीं तो 90% लोग अभी मोबाइल से अडिक्ट हो चुके हैं, और वो बहुत बड़ी लत लग चुकी है अभी लोगों को। तो मेरे ख्याल से सर, अभी ये जो सभी आपने लक्षण बताए, या फिर जो एप्लीकेशंस है जो इतने अच्छी तरह से डिज़ाइन किए हैं कि लोगों को उस आदत लगे, उसकी वजह से ही ये जो लत है वो तेज़ी से बढ़ रही है। तो सर, क्या मोबाइल एडिक्शन को एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या भी माना जा सकता है?
0: हाँ, मोबाइल फ़ोन एडिक्शन को मानसिक स्वास्थ्य समस्या बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि इसमें निमहांस ने, सर्विस फॉर हेल्दी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी क्लिनिक निमहांस, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पे हमने काफ़ी रिसर्च करी है इसके बारे में, और इसमें पाया गया है कि ये बहुत सारे युवकों में, एडोलेसेंट्स में, और जो यंग अडल्ट हैं उनमें ये पाया जा रहा है। और हमने यहाँ पे भी और बाकी जितनी भी दुनिया में रिसर्च की जा रही है, उसमें पाया गया है कि ये एक मानसिक समस्या बन गई है। अगर मैं कुछ आंकड़े आपको उसको बताऊं, तो हमने कुछ रिसर्च करी जिसमें कि कर्नाटका में ही हमने कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च की, उसमें पाया गया लगभग 2700 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में हमने रिसर्च की गई थी। उसमें कुछ प्रेवलेंस डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसमें 29% को पाया गया कि वो माइल्ड इंटरनेट एडिक्शन उनमें पाया गया, 16% लोगों को मॉडरेट इंटरनेट एडिक्शन पाया गया, और 0.5% लोगों को सीवियर इंटरनेट एडिक्शन पाया गया। और उसमें ये पाया गया, कुछ रिस्क फैक्टर भी पाए गए, कि तो इसमें ये पाया गया कि जो बॉयज़ हैं, जो मेल यूथ है, वो ज़्यादा रिस्क पे हैं, और जो कि अपने घर से दूर रहते हैं, जो कि हॉस्टल्स में रहते हैं, रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, और जो कि लगभग 3 से ज़्यादा घंटे इंटरनेट का यूज़ या स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं अपने आनंद लेने के लिए, या अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, या कोई और एक्टिविटीज़ के लिए, वो ज़्यादा रिस्क पे हैं।
1: अच्छा।
0: और एक साइकोलॉजिकल समस्या और जो आगे उभर के आ रही है, वो है डिप्रेशन। वो ये भी देखा गया है कि स्टडी में जिन लोगों को डिप्रेशन था, उन लोगों का ज़्यादा रिस्क बन जाता है स्मार्टफोन को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करने का, जैसे बोलते हैं स्मार्टफोन एडिक्शन होने की उनको ज़्यादा रिस्क है। तो ये कुछ आंकड़े हमारे पास हैं। और एक हमने शट क्लिनिक निमहन से 2015 में एक सर्वे, हमने बैंगलोर और आसपास के जो सब अर्बन एरिया थे, रूरल एरियाज में, वहाँ किया था। और ये सर्वे 2755 लोगों पे किया गया था, एज ग्रुप था 18 से 30 साल। और इसमें हमने क्या पाया गया कि इसमें 1.3% लोगों को इंटरनेट एडिक्शन पाया गया, 4.1% लोगों को स्मार्टफोन एडिक्शन पाया गया, 3.5% लोगों को सोशल नेटवर्किंग साइट्स एडिक्शन पाया गया, 4% लोगों को शॉपिंग एडिक्शन पाया गया, गैम्बलिंग एडिक्शन जिसे बोलते हैं 1.2% पाया गया, और वीडियो गेम एडिक्शन 7%।
1: अच्छा, तो क्या कहते हैं आपकी स्टडी की ये जो आंकड़े अभी आपने बताए, तो कौन से स्टेज पे है हम अभी?
0: ये आप मान सकते हैं कि एक कम्युनिटी में तीनों तरह के सिवियरिटी पाई जा रही है, माइल्ड भी हैं, मॉडरेट भी हैं, और सिवियर भी हैं।
1: अच्छा।
0: तो जो माइल्ड हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, लगभग 27 से

0: परसेंट लोग माइल्ड इंटरनेट एडिक्शन है, जो भी असेसमेंट जो रिसर्च की गई है इंडिया में, और लगभग 16% लोग हैं जो कि मॉडरेट हैं। तो अगर देखा जाए तो सब ज़्यादातर भी माइल्ड टू मॉडरेट की कैटेगरी में है, और इस चीज़ को अगर अभी हमें हमने ध्यान नहीं दिया गया, विशेषज्ञों ने नहीं ध्यान दिया, और बाकी जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि स्कूल में टीचर्स, घर पे पेरेंट्स और बाकी हॉस्पिटल्स में मनोवैज्ञानिक, इन सभी को इस समस्या से मिलकर जूझना पड़ेगा। इससे हमें जूझने की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं आ पाते हैं, जिनको कि मॉडरेट या सीवियर नहीं है वो यहाँ नहीं आएंगे, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे हेल्प लेने के लिए। लेकिन जो माइल्ड हैं वो हो सकता है कि हमारे पास ना भी पहुँचें, वो एक्सेस होगा, वो स्कूल में है, वो कॉलेजेस में है और वो घर पे हैं। लेकिन अगर वो ज़्यादा यूज़ करेंगे इसको, तो जो माइल्ड है वो धीरे धीरे मॉडरेट बनेंगे, और जो मॉडरेट हैं वो धीरे धीरे सीवियर की तरफ जा सकते हैं।
1: करेक्ट, वो शिफ्ट होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सर अभी इतना सब कुछ आपने बताया, तो इसका मतलब ज़्यादा इस्तेमाल करने से शारीरिक और मानसिक रूप पे क्या असर पड़ता है?
0: तो इसमें हमने ये पाया गया कि इसमें बहुत सारी तकलीफें आपको हो जाती हैं, जैसे कि कुछ तरह के फिनोमिना मैं आपको बताऊंगा। एक बोलते हैं इसे, कहते हैं कि शारीरिक समस्याओं से, इससे कि आपकी गर्दन में, शोल्डर्स में और पीछे जो स्पाइन है आपकी, जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें पेन होना, इन्फ्लेशन होना हो जाता है। इसे बोलते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। जब आप सीधे खड़े रहते हैं और आपका अगर सर बिल्कुल टिल्ट नहीं हुआ है, 0 डिग्री पे रहता है, तो लगभग आपका जो मस्तिष्क है वो 4 से 5.5 किलो का उसका वजन होता है। ठीक है, जैसी जैसी ये आपका शरीर का जो मस्तिष्क का जो आपका जो गर्दन का टिल्ट है, अगर वो 15 डिग्री होता है, तो आपका लगभग जो जो आपकी जो पुल है धरती की तरफ, ग्रेविटेशनल पुल, वो 12 kg का हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे ये 30 डिग्री का टिल्ट होगा, ये 18 kg का हो जाएगा, पुल करेगा, इतना ग्रेविटेशनल पुल होता है। जब 45 डिग्री पे टिल्ट रहेगा आपका नेक, तो ये 22 किलो का ग्रेविटेशनल पुल करता है। और जब ये पूरा 60 डिग्री पे, जैसे कि पूरा अपने बिल्कुल ही इमर्स हो जाते हैं अपने गेमिंग एक्टिविटी में, सोशल मीडिया में या कोई वेब सीरीज वॉचिंग में, तो जब ये 60 डिग्री टिल्ट होता है तो लगभग ये 27 kg का ग्रेविटेशनल पुल होता है। और अगर ये एक्सटेंडेड पीरियड, मतलब अगर ये लंबे समय तक 2 घंटा 3 घंटा भी सिचुएशन में रहें और रोज लगभग, तो ये आपको कुछ समय बाद आपकी नेक मसल्स, शोल्डर मसल्स लूज होने लग जाती हैं।
1: अच्छा।
0: और इसकी वजह से आपको पेन और ये नेक में स्पैज्म रहता है। तो ये है टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। कुछ लोगों को जो जरूरत से ज़्यादा गेमिंग करते हैं, उनके हाथ में कार्पल टनल सिंड्रोम, जो जैसे कि जैसे पहले बोलते थे कि जो ज़्यादा टाइप करते हैं उनको होता है, अब जो ज़्यादा गेमिंग करते हैं वो अपनी इंडेक्स फिंगर, थंब और जो सेकंड फिंगर है इसका ही इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो उनके यहाँ पर रिस्ट में पेन स्टार्ट हो जाती है। कई लोगों को ड्राई आइस की शिकायत होती है, क्योंकि उनकी आइस ड्राई हो जाती हैं, बिकॉज जो गेमिंग है और सोशल मीडिया है, ये आपकी जो नॉर्मल ब्लिंकिंग होती है आई मूवमेंट, ये उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है। आपका एक मिनट में लगभग 20 से 30 बार ये आईज ब्लिंक होती हैं, लेकिन जब आप गेम्स खेलते हैं, स्पेशली जब सोशल मीडिया पर रहते हैं, जब रील्स देखते हैं आप एक के बाद एक, तो ये आईज बंद होने का जो नॉर्मल फंक्शन है वो नहीं होता।
1: करेक्ट।
0: तो जब वो नहीं होता है तो आपकी आईज ड्राई होने लग जाती हैं और वो वाटरी आईज बन जाती हैं। तो ये कुछ फिजिकल तकलीफें जो हो जाती हैं, कुछ मानसिक इनसे फिनोमिनाज भी निकल के आते हैं, जैसे कि उसे बोलते हैं नोमोफोबिया। नोमोफोबिया मतलब नो मोबाइल फोबिया। वो तब होता है जब आप अपने एक ऐसा डर, जैसे कि जब भी आप अपने मोबाइल फोन से कुछ समय दूर रहें तो आप में बेचैनी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा लग जाता है। तो रिसर्च ने पाया गया है कि ज़्यादातर ये सभी लोगों में पाया जाता है, और हमें सोचना है कि रिसर्चर्स ने ही बताया कि ज़्यादातर 72% लोग जो हैं वो 5 फीट से ज़्यादा अपने मोबाइल फ़ोन से दूर नहीं रह पाते हैं। तो ये इसे बोलते हैं नो मोबाइल फोबिया। ये किसी की वजह से भी हो सकता है। और कुछ इसमें इंडिया में पब्लिश्ड आंकड़े भी हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के आंकड़े देखा जाए तो माइल्ड नोमोफोबिया 41% लोगों में पाया गया, मॉडरेट 42% में, और सिवियर पाया गया है 15.2% लोगों में, यंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में, 18 to 24 ईयर्स के बीच में।
1: अच्छा।
0: तो इसे बोलते हैं नो मोबाइल फोबिया। और एक फिनोमिना होता है उसे बोलते हैं फोमो, आपको पता होगा, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब आपको लगता है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं या और जो कम्युनिटी है उनकी लाइफ में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है जो कि आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है, और अगर आप उससे नहीं जुड़ पाएंगे तो आपसे वो बहुत ही जो फिनोमेना है, जो इवेंट है, वो मिस हो जाएगा और आप जो है उस ग्रुप से लगभग बाहर हो जाएंगे, आपका ग्रुप से वो जो टच चला जाएगा। इसे बोलते हैं फेयर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक मानसिक फिनोमेना है, और इसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। इसके चलते ही लगभग 56% जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो लगभग 5 घंटे से ज़्यादा अपने मोबाइल फ़ोन से दूर नहीं रह पाते हैं मैक्सिमम। लेकिन ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, मैं जो आपको बता रहा हूँ, अगर अभी दोबारा रिसर्च की जाए तो ये समय जो है मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं रह पाएगा।
1: बिल्कुल,
0: आखिरी बार हम खुद ही सभी श्रोता सोच सकते हैं, आखिरी बार आप जब आप नहीं सो रहे हो तब आप ऐसा कोई टाइम बताइए जब 2 घंटे आप मोबाइल फोन से दूर रहे हो जगते हुए समय।
1: करेक्ट ना।
0: तो ये है नेक्स्ट फिनोमिना, इसे बोलते हैं फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम ऐसा फिनोमिना होता है जब आपको लगता है कि आपका फोन बज रहा है या फिर आपका फोन वाइब्रेट कर रहा है आपकी बॉडी के अगेंस्ट, लेकिन जब आप चेक करते हैं तो ना तो फोन आ रहा होता है, ना तो बज रहा होता है वो, और ना ही वो वाइब्रेट कर रहा होता है। तो इसको बुलाता है फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। तो ये हफ्ते में एक आध बार अगर हो जाए तो ठीक है, ये नॉर्मल माना जाता है मनोवैज्ञानिक भाषा में, लेकिन अगर ये 2 या 3 बार हो जाए हफ्ते में, अगर आपको लगे कि ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट एक लक्षण है, ये फिनोमिना है, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है कि आपको, जो हमने शुरू में 8 चीजें बात करी थी वो क्राइटेरिया, आपको ये एडिक्शन हो सकता है। एक और एक फिनोमिना इसे बोलते हैं फबिंग, हिंदी में इसका मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, फबिंग इसे बोलते हैं कि जब आप किसी से दूसरे से, कोई आपसे बात करना चाह रहा हो, जब आप किसी दूसरे से बात करना चाह रहे हो तो वो जो है व्यक्ति वो अपने मोबाइल फोन में लगा हुआ है, वो कह रहा है कि मुझसे बात करो मैं सुन रहा हूँ, वो अपना मोबाइल फोन भी देख रहा है और आपसे बात भी कर रहा है। तो इसे लगता है कि बहुत ही नॉर्मल सी एक्टिविटी है, कोई इसमें हार्म नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ये सिलसिला चलता रहे तो इससे 4 फंडामेंटल नीड्स, जिसे बोलते हैं मनोवैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स जो हैं, वो इन पे इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि आपकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उस रिश्ते में, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, और कुछ अमाउंट ऑफ कंट्रोल कम्युनिकेशन में, क्योंकि जो आप बात करना चाह रहे हैं, अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कम मिलता है उस रिलेशनशिप में, और धीरे धीरे अगर ये चलता रहे तो ये आपका जो रिश्ता होता है ये इमोशनली लेस सेटिस्फाइंग बन जाता है, और धीरे धीरे फिर वो रिश्ते में जो है डिप्रेसिव सिम्टम्स स्टार्ट होने लगते हैं।
1: अच्छा।
0: तो इसको बोलते हैं फबिंग। ये सारे फिनोमिनाज जो हैं, ये मानसिक फिनोमिनाज जो हैं, ये धीरे धीरे मोबाइल फोन एडिक्शन के साथ में धीरे धीरे आने लग जाते हैं। तो इसको, इन सब फिजिकल प्रॉब्लम्स और ये मानसिक जो फिनोमिनाज हैं, इनको अगर हम नज़र में रखें तो ये वाकई में इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट होता है और इसे एक मानसिक रोग माना जा सकता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से समझा है सर आपने, पर हम अपने बच्चों को ये लत लगी है या नहीं वो कैसे पता कर सकते हैं?
0: हाँ, तो यही जैसे मैंने बताया था कि पहला क्राइटेरिया है कि प्री ऑक्यूपेशन, वो सभी काम कर रहे हैं लेकिन उनका मन है कि जैसे ही उनको टाइम मिले एकदम तुरंत ही वो मोबाइल फोन पे वापस आके बैठ जाएं। सारे प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि दिमाग के पीछे यही लगा हुआ है कि जैसे ही ये काम खत्म होगा सीधा मोबाइल फोन के ऊपर हाथ जाएगा, सीधा मोबाइल फोन में सोशल मीडिया खोलेंगे या कुछ व्हाट्सएप खोलेंगे या इंस्टाग्राम रील खोलेंगे या यूट्यूब रील खोलेंगे, तुरंत उनका वहां मन लगता है, उनका मन कोई और चीज करने का कर ही नहीं रहा है। हो सकता है वो तुरंत उठ के बाहर जाके खेलने जा सकते थे, तुरंत कुछ उठ के किचन से कुछ रखा हुआ आ गया है, अच्छी चीज कुछ मिठाई रखी है वो खा सकते थे, हो सकता है कुछ और शैतानी कर सकते थे, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं, वो कहाँ मिलेंगे, वो मोबाइल फोन के ऊपर मिलेंगे, तो उसे बोलते हैं प्री ऑक्यूपेशन। तो ये क्राइटेरिया। दूसरा है, पहले वो सिर्फ 1/2 घंटा 15 मिनट में उसको मोबाइल फोन को छोड़ देते थे, अब वो उस चीज को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं जब तक कि उनसे ये उनके हाथ से लिया ना जाए उनके, तो इसे बोलते हैं टॉलरेंस, जैसे मैंने बताया। तीसरा इनका सिम्टम है कि अब जो है उनको, अगर आप उनसे ले लेते हैं फोन तो उनका मूड जो है खराब हो जाता है, बेचैनी हो जाती है, इरिटेशन हो जाता है उनको, और फिर वो उसको ठीक नहीं कर पाते हैं बिना मोबाइल फोन के। चौथी चीज है कि ये भी देखा गया है कि उनको जब भी वो आपके साथ, पेरेंट्स के साथ कुछ मतभेद हो जाए, अनबन हो जाए, या घर में कोई और बात हो जाए और वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, तो वो अपना मूड सही करने के लिए बोलते हैं कि मुझे थोड़ी देर फोन दो, मुझे थोड़ी देर फोन देखना है। जब माँ पूछते हैं क्यों देखना है तो कहते हैं नहीं मुझे फोन दे दो, मैं फोन देखने के बाद मेरा मूड ठीक हो जाता है। तो वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। चौथी चीज है कि जब उनसे, और जब भी देखा जाए कि अगर उनसे बोला जाए कि अभी 1/2 घंटा हो गया है अभी से बंद करके आ जाओ, तो उनसे खुद से कंट्रोल नहीं हो रहा है, डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग, खुद से कंट्रोल नहीं किया जाता, खुद से बंद नहीं किया जाता, स्टार्ट कर देते हैं लेकिन बंद नहीं हो पा रहा, तो डिफिकल्टी टू कंट्रोल। तो ये सब अगर लक्षण उनमें अगर आपको दिख रहे हैं, और दूसरा कि उनको अब मन नहीं करता है बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ खेलने का, उनको मन नहीं करता अब दूसरों से बात करने का, उनको मन नहीं करता कोई और घर में काम करने का, हाथ बटाने का, उनको लगता है वो टाइम जो मुझे मिला है फ्री वो सारा टाइम मैं इसमें समर्पित कर कर दूं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये अगर उनको लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं, इनमें से अगर 8 लक्षण बताए थे, इनमें से अगर 5 भी हैं, तो ये आप मतलब समझ सकते हैं कि वो एक रिस्क पे हैं, उनको सहायता की जरूरत है।
1: अच्छा, तो सर इस पे अभी कंट्रोल कैसे पाए हम?
0: ओके, तो इन पे कंट्रोल के लिए हम बोलते हैं डिजिटल हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल्स। मतलब हमें टेक्नोलॉजी का एक्सेस तो है, लेकिन हमें उसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसका हमें ज्ञान नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके पास एक्सेस तो आ गया है, लेकिन उसको यूज़ कैसे करें उसका एक्सेस नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं डिजिटल हेल्दी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल्स। तो इसमें हम युवकों को और जो एडोलेसेंट्स हैं इस उम्र में, उनको हम कुछ स्किल्स सिखाते हैं। जैसे कि एक होता है स्किल जिसमें बोलते हैं फ़ोन बास्केट स्किल।
1: अच्छा।
0: उसमें जब ये फैमिली मेम्बर्स को भी बताना पड़ता है, ज़रूरी है कि सभी जो फैमिली हैं इंक्लूडिंग युवक जो हैं उसमें, वो शाम को हमें एक टाइम डिसाइड करना है, हो सकता है 7 बजे या हो सकता है 8 बजे या कुछ एक समय, लगभग उस टाइम पे सारे जो अपने फ़ोन हैं, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, आईपैड है या और भी कोई टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है, उसको उस टोकरी के अंदर डाल देना। उसके बाद उसको वहां से निकालना नहीं है अगले दिन सुबह तक।
1: अच्छा।
0: अगर बीच में फोन बजेगा तो उठा सकते हैं, लेकिन जो मैसेज आया व्हाट्सएप पे मैसेज आया, कोई इंस्टाग्राम पे फीड आई, फेसबुक पे फीड आई, स्नैपचैट से कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, वो कुछ नहीं चेक होगा। अब जो टाइम बचा है, चाहे वो 8 बजे हो चाहे 7 बजे से रात को 10-11 बजे तक, वो सारा आपने ऑफलाइन एक्टिविटीज में बिताना है।
1: अच्छा।
0: तो ये इसे बोलते हैं फोन बास्केट स्किल। सेकेंड होता है कि अपने सेम शाम के समय या पूरे दिन आप कोशिश करनी कि अपने जो नोटिफिकेशंस हैं उसको साइलेंट मोड में डाल देना है। तीसरा है, इसे बोलते हैं स्टैगर्ड रिस्पांस। मतलब हमें हमेशा अवेलेबल नहीं रहना है इन अपने स्मार्टफोन पे रिस्पॉन्ड करने के लिए। कोशिश करें कि 3 घंटे में एक बार अगर फोन देखें। ये काफी मुश्किल और इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन नहीं तो फिर ये प्रीऑक्यूपेशन बढ़ेगा।
1: अच्छा।
0: तो कोशिश करें कि 3 घंटे में एक बार अगर अपना देख सकें मोबाइल फोन, अगर और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का है, उसमें लिखना पड़ेगा आपको अपना व्हाट्सएप स्टेटस चेंज करना पड़ेगा। मतलब उसमें लिखना पड़ेगा कि मैं जो है अपना मोबाइल फोन मैसेजेस के लिए इस समय देखूंगा। 3 घंटे अगर ज्यादा लगता है तो 2 घंटे। तो अगर किसी को उससे ज्यादा तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए तो है, तो अगर बहुत ज्यादा तुरंत चाहिए तो उसमें लिखना पड़ेगा कि अगर तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए तो कृपया कॉल करें, जिससे कि आप फ्री हो जाएं। नहीं तो हमेशा आप एक उसी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं थ्रू आउट द डे, पूरा दिन आप उसी को रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। चौथा है कि जब भी आप दूसरों से बात करें तो मोबाइल फोन को सीधा पॉकेट में डाल के बात करें, हाथ में रख के बात नहीं करें। इससे आपके जो रिश्ते हैं वो लेस सेटिस्फाइंग बनते जा रहे हैं, और इनसे जो है आपके जो रिश्तों से जो आपको पहले खुशी मिला करती थी वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। और आपको ये लगने लगा है, सबको जो भी इस्तेमाल करते हैं फोन, कि ये स्मार्टफोन से ज्यादा खुशी मिलती है, स्मार्टफोन से यूज करने ज्यादा आनंद मिलता है, तो इसको ज्यादा यूज किया जाए। और एक स्किल है, उसे बोलते हैं नो फोन जोन्स। घर में जो है पेरेंट्स को और युवकों को हमें कॉमनली डिसाइड करना पड़ेगा कि जो बेडरूम है और जो आपका स्टडी रूम है, वहां पे फोन किसी का भी नहीं जाएगा, ना पेरेंट्स का जाएगा और ना ही बच्चों का जाएगा। तो उसको नो फोन जोन डिक्लेयर करना। और आखिरी है, हम बोलते हैं जैसे हम उपवास रखते हैं खाने का उपवास, उसी तरह से डिजिटल फास्टिंग करना।
1: अच्छा।
0: तो डिजिटल फास्टिंग में हम पूरा दिन के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन ये कई बार नहीं सक्सेसफुल हो पाता है। तो जो सक्सेसफुल हुआ है, हमने देखा है अपने युवकों में, हमने हमारे क्लिनिक में, वो आधे दिन सुबह उठते हैं, लगभग जो भी 9 बजे या 7 बजे अब उठते हैं, वहां से लेके 5-6 घंटा 1-2 बजे तक वो कर पाते हैं। तो अगर कहीं से भी आप शुरुआत करते हैं 2-3 घंटे से ही फास्टिंग करना, तो अच्छी बात है। देखिए कि कितने देर तक आप जा सकते हैं। हफ्ते में एक दिन कोशिश करिए कोई आधा दिन जो है आप फास्टिंग अगर कर सकें, क्योंकि इससे जो है आपको जो ये जो टेक्नोलॉजी यूज है या स्मार्टफोन एडिक्शन है, इससे आप अपने आप को दूर रख पाएंगे। तो ये कुछ हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल्स हैं जो कि बहुत आवश्यक हैं, और इसे में लर्न करना भी बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि अगर आप इसे नहीं लर्न करेंगे तो ये टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है और जिस तरह से इसके न्यू एप्लीकेशंस और फीचर्स आ रहे हैं, ये आपको यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी आपको यूज़ कर रही है, आप टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने आखिर में कि टेक्नोलॉजी हम नहीं यूज कर रहे, हमें टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। आप सुन रहे वेणु धोनी 90.4 FM KLE कनसु, और आज के इस विशेष प्रोग्राम में मोबाइल एडिक्शन के ऊपर बात चल रही है। हमारे साथ है डॉक्टर नितिन आनंद, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस निमांस बेंगलुरु में क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। सर बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने अब तक डिस्कस की, और ये जो मोबाइल एडिक्शन है उसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें आपने बताई। ये जो डिजिटल डिटॉक्स है वो क्या है, और इसे दैनिक जीवन में हम कैसे अपना सकते हैं?
0: जो डिजिटल डिटॉक्स है, ये अभी मैंने जो पहले बताया कि हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल्स, उसका एक नेक्स्ट लेवल है।
1: अच्छा,
0: जैसे डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन जो है, उसमें हमें कुछ समय तक, हमें पहले से निर्धारित करें कि हमें कितने समय तक इसका यूज नहीं करना है और उसको हमें उससे दूर रहना है। तो मिनिमम जो होता है वो कम से कम एटलीस्ट स्टार्ट करना पड़ता है 3 घंटे से डिजिटल डिटॉक्स करना अपने आप को। डिटॉक्स मतलब जब हम टेक्नोलॉजी से दूर रहें, जब हम दूर रहेंगे तो हमें वो समय उससे फ्री मिलेगा और उस टाइम पे हम जो भी अपनी बाकी दिनचर्या के कार्य हैं वो करने हैं वो सारे हमें कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी स्टडीज की गई हैं और मैं कुछ स्टडीज के ऊपर आपको एक समरी में बताना चाहूँगा। ये जो स्टडीज की गई हैं ये बाकी बहुत सारे देशों में की गई हैं, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, यूके और साउथ कोरिया में ये वैज्ञानिक प्रयोग किया गया है कि डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन जब करा आता है तो उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो पहला तो पाया गया कि अगर आप डिजिटल डिटॉक्स करते हैं अपने आप को और कुछ निर्धारित समय के लिए अपने आप से प्रण लेते हैं कि हमें यूज नहीं करना है टेक्नोलॉजी, तो ये पाया गया कि जो ड्यूरेशन ऑफ यूज है, मतलब जितने समय तक आप यूज करते थे पहले अपना स्मार्टफोन, वो 6 स्टडी में उन्होंने प्रयोग किया और 6 की 6 में पाया गया कि ये सफल रहा। दूसरा होता है सेल्फ रेगुलेशन। मोबाइल फोन जो होता है हमारा सेल्फ रेगुलेशन बहुत ही कम कर देता है, हमारा खुद पे, हमारा खुद मनोबल पे खुद रेगुलेट करना चीजों को बहुत पुअर हो जाता है। तो ये पाया गया कि सेल्फ रेगुलेशन जो है वो 2 स्टडी में उन्होंने स्टडी किया और उन्हें पाया गया कि 1 स्टडी में वो सक्सेसफुल रहा। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो है प्रोकास्टिनेशन, मतलब जो काम आप डिले कर देते हैं कि इसे बाद में करेंगे, ये इसी की वजह से होता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन पाया गया, 2 स्टडी में उन्होंने स्टडी किया और दोनों की दोनों में ये बेहतर हो गया। चौथा जो था स्लीप, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन में आपकी जो है स्लीप जो है वो बेहतर हो गई, उन्होंने 1 स्टडी में पाया गया कि ये बेहतर हो गई। ओवरऑल लाइफ सेटिस्फेक्शन जो है वो पाया गया 8 स्टडी में उन्होंने स्टडी किया था और उन्हें 4 में से 8 में ये पाया गया कि लोगों का जो सेटिस्फेक्शन है लाइफ से वो बेहतर हो गया जब उन्होंने ये डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन किया। तो ये सब चीज़ों से करने से ये पाया गया है कि आपकी जो बाकी चीज़ों में जो डिफिकल्टी चल रही हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं। तो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन है कि कुछ निर्धारित समय के लिए आप जो है धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं डिजिटल फास्टिंग से, लेकिन डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन मिनिमम 3 घंटे स्टार्ट होता है और ये 2 हफ्ते तक जाता है। जिनको जो माइल्ड टू मॉडरेट डिफिकल्टी, जिनको माइल्ड है, वो कम से कम दिन का अपना 3 घंटा डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन करें।
1: अच्छा।
0: जो मॉडरेट सिवेरिटी के लोग हैं जिनको लगता है कि उनमें ज्यादा है, अगर कोई भी 3 घंटे से अराउंड कर रहा है तो उसे माइल्ड कैटेगरी माना जाएगा। जो 3 से 6 घंटे यूज करता है लेजर टाइम एक्टिविटीज के लिए उसको मॉडरेट कैटेगरी मान सकते हैं। जो 6 घंटे से ज्यादा या 5 या 6 घंटे से ज्यादा मोबाइल फोन यूज कर रहा है, काम के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, लेजर टाइम एक्टिविटीज के लिए, वो सिवियर कैटेगरी में लगभग आ रहा है। तो उसको जो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन है कम से कम धीरे धीरे स्टार्ट करके उसको दिन का कम से कम कुछ नहीं तो 5 घंटा या 4 घंटा से शुरू करना है धीरे धीरे। तो इसी तरह से अपनी धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ानी है और बाकी जो चीज़ें जिनमें आपको टाइम देना है, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके पढ़ाई में, आपके ऑफिस के कार्य में, कोई नया स्किल लर्न करने के लिए, कोई नई हॉबीज लर्न करने के लिए, ऑफलाइन सोशल इंटरेक्शंस के लिए, फैमिली रिचुअल्स के लिए, क्योंकि ये सारा टाइम यहीं से निकाल के आपने मोबाइल फ़ोन को दिया है। और अगर आप इन एक्टिविटीज़ में टाइम अगर नहीं देंगे तो मानसिक तकलीफें और मानसिक डिफिकल्टीज, चैलेंजेस इन सारे रिलेशनशिप्स में आएंगी, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, ऑफिस वर्क में हो, एकेडमिक वर्क में हो, अपनी फ्रेंडशिप्स में हो, या फिर आपके कोई नए स्किल लर्निंग की एक्टिविटीज़ में हो। और हमने यही पाया गया है कि देखा गया रिसर्च में कि न्यू स्किल लर्निंग अब जो युवकों में धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि सारा समय जो फ्री समय मिलता था उन्हें वो अब स्मार्टफोन में जा रहा है।
1: करेक्ट सर, हम हमारे श्रोताओं को क्या बताएंगे, कुछ इजी टिप्स जिससे मोबाइल उपयोग का वो कम यूज करें।
0: ओके, सो इजी टिप्स में हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले कोशिश करें कि एक तो नो फोन जोन्स, जैसे मैंने पहले बताया था कि अपने घर में निर्धारित करें कि नो फोन जोन्स कौन सी हो सकती हैं। वो हर किसी के घर में अलग अलग हो सकती हैं, तो पहले नो फोन जोन डिसाइड कीजिए जिससे कि आपको मोबाइल फोन यूज करने में रेगुलेशन आएगा। और ये हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी क्यों जरूरी है, क्योंकि हम इसमें एब्सटिनेंस नहीं कर सकते। एब्सटिनेंस मतलब पूरा इससे परहेज नहीं कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: हमको यूज तो करना पड़ेगा,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन उसको हम रेगुलेट कैसे करें। तो पहला है कि नो फोन जोन्स अपने घर में निर्धारित करें, अपने लिए निर्धारित करें, जिससे कि आपका टेक्नोलॉजी पे यूज, जो टेक्नोलॉजी पे जो रेगुलेशन है वो बढ़े, ना कि टेक्नोलॉजी आपको कंज्यूम करे। दूसरा है, जैसे मैंने डिसाइड किया कि अपने नोटिफिकेशन जो हैं कोशिश करें इनको अगर साइलेंट मोड में रखें। तीसरा है कि अपना डेली डिसाइड करना है कि इवनिंग में किस समय के बाद आप जो है नोटिफिकेशंस देखेंगे नहीं शाम में कुछ समय के बाद। चौथा है कि हमें जैसे मैंने बताया फोन बास्केट का स्किल, तो शाम में अपना फोन जो है हमें एक बास्केट के अंदर डाल देना है, चाहे लैपटॉप हो, चाहे फोन हो, चाहे और भी कोई टेक्नोलॉजिकल डिवाइस हो, और ऑफलाइन एक्टिविटीज में हमें समय बिताने की कोशिश करनी, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली मेंबर्स के साथ हो, या कोई नया स्किल लर्न करना हो, या कोई और माध्यम से हमें आपको अपने आप को रिलैक्स करना हो, वो हमें वापस सीखना पड़ेगा। पांचवी चीज, जब भी किसी से बात करें तो कोशिश करें कि फोन को अपनी पॉकेट में रखें और फिर बात करें। इससे आपके रिश्तों में जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन जो आपको मिलेगा वो बेहतर होगा और आपका रिश्ता भी घनिष्ठ बनेगा, नहीं तो वो धीरे धीरे रिश्तों में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं और उसकी वजह से फिर आपका मन करता है कि ठीक है मोबाइल फोन यूज करें। और एक और है कि डिजिटल फास्टिंग, जो बताया था मैंने कि डिजिटल फास्टिंग करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको अपने खुद पे नियंत्रण जो है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सेल्फ रेगुलेशन, वो बेहतर हो जाएगा। तो हो सके तो अगर आप मिनिमम, या अगर आप एक घंटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि कम से कम 2 घंटे से एटलीस्ट स्टार्ट करें।
1: अच्छा।
0: कोशिश करें कि 2 घंटा बिना मोबाइल फोन को यूज करें वे बिताना है आपको प्रतिदिन। धीरे धीरे उससे स्टार्ट करें और फिर देखें उसको बढ़ाएं। तो अगर ये सारी एक्टिविटीज आप धीरे धीरे अपने दिनचर्या में, अपने डेली शेड्यूल में लाएंगे तो वो बेहतर होगा। और हाँ, रात को डिनर के बाद फोन को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि रिसर्च में ये भी पाया गया है कि जब वो रात के में जब ये फोन हाथ में आ जाता है तो वो डिनर के बाद में वो कैसे 2 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता है।
1: बिल्कुल।
0: और ये स्टडीज में पाया गया कि लगभग इंडिया में 60-90 मिनट्स का स्लीप का डिले हो गया है, स्लीप स्टार्ट होने में डिले हो जाता है। तो इन सब चीजों का अगर ध्यान रखें तो ये चीजें बेहतर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बर्निंग इशू है अभी का। सबको मोबाइल की इतनी आदत लग चुकी है कि वो अभी छुड़वाना, मेरे ख्याल से अभी काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ती है उसके लिए, तो वो भी लेना पड़ता है। और उसको लेके मतलब मोबाइल का यूज जो हम कर रहे हैं, मोबाइल एडिक्शन जो हमें हुआ है, उसको लेके क्या हो सकता है मानसिक रूप में और शारीरिक रूप में, वो आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया सर। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमें समय दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू।
1: ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो हम केली वेणुधोनी 90.4 FM पे सुन रहे थे। हमारे साथ थे डॉक्टर नितिन आनंद, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस बेंगलुरु में क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। उसी के साथ साथ निमांस के सर्विस फॉर हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी क्लिनिक में विशेष तज्ञ सलाहकार के रूप में वो कार्यरत है। ये भारत का पहला टेक्नोलॉजी डी एडिक्शन क्लिनिक है, जहाँ इंटरनेट, सोशल मीडिया, गेमिंग और जुआ की लत से जुड़ी समस्याओं के लिए विशेष उपचार और परामर्श दिया जाता है, खासकर किशोरों और युवाओं के लिए। इसके अलावा वो स्पेशलिटी ओबेसिव डिसऑर्डर क्लिनिक में भी मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और उपचार प्रदान करते हैं, जो इस प्रकार का भारत में शुरू किया गया पहला विशेष क्लिनिक है। उनको हम सुन रहे थे और आज का विषय था मोबाइल एडिक्शन, उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। कैसा था आज का एपिसोड जरूर बताइए, नंबर है 9019904904। ये है केली वेणुधोनी 90.4 FM की प्रस्तुति। नमस्कार।

गुड इवनिंग एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम खुश हैं आप लोग और एकदम फर्स्ट क्लास लग रहे हैं आज सब। स्वागत है आपका इस रंगीन शाम में। और आपकी शाम को और बेहतर बनाने के लिए आप सब भी ने ट्यून कर लिया है बेलगावी का सबसे बड़ा और सबसे पहला रेडियो स्टेशन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। और मैं हूँ आप सभी का प्यारा दुलारा रेडियो होस्ट और दोस्त यानी कि RJ आयुष। और आज का ये शो होने वाला है एकदम खास, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आप सभी को साहस देने वाले उस शब्द के बारे में जो आपको लाइफ और वर्ल्ड को फेस करने के लिए काबिल बनाता है, और वो शब्द है यस, कॉन्फिडेंस। अगर ये है तो सब कुछ है दोस्तों। ओवरऑल पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज हम इसी से रिलेटेड कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही करेंगे आपका मनोरंजन। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको हमारे साथ बने रहना है और कर लेनी है अपने रेडियो की वॉल्यूम एकदम फुल और साथ ही सुनते रहना है 90.4 KLE कनसु वेणु ध्वनि।

दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर आप सभी के फेवरेट शो बी रिलैक्स में, और आप सुन रहे हैं वेनु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसु विद RJ आयुष। और आज हम बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के बारे में, द इनर पावर। ओके दोस्तों, कॉन्फिडेंस या फिर आत्मविश्वास जिसे हम कहते हैं, इट्स अ सेल्फ बिलीव, इट्स नॉट अ ट्रेट, इट्स अ माइंडसेट, अ वे ऑफ लाइफ। कॉन्फिडेंस एक तरह की क्वालिटी है जो हमारे अंदर से ही रेडिएट करती है और हमारे नजरिए को बढ़ाती है, जैसे हम खुद को देखते हैं या लोगों के नजरिए भी हमारे प्रति थोड़ा सा बढ़ा देता है। देखा जाए तो ये एक तरह का डायनामिक फोर्स है जो हमने अपने गोल्स अचीव करने में मदद करता है, ऑब्स्टिकल से सामना करना सिखाता है और हमारी लाइफ को एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस बना देता है। और हम बनाएंगे आपकी शाम को थोड़ी सी फुलफिल्ड। तो आप सुनते रहिए मेरे साथ ये धमाकेदार सॉन्ग और हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE का नसू।

Hello and welcome back one more time to Belgavi's first radio station Venu Dhwani 90.4 KLE Kanasu, जहां हम करते हैं आपका entertainment और देते हैं आपको कई सारी interesting जानकारियां, क्योंकि आप सुन रहे हैं हमारा favorite show Be Relaxed with your host RJ Ayush। दोस्तों, कॉन्फिडेंस होता क्या है ये हमें जान लिया, इसकी कई सारे नाम है जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी। जानते हैं हाउ कॉन्फिडेंस इज इम्पोर्टेंट इन आवर प्रोफेशनल एज वेल एज इन आवर डेली लाइफ। पहला, पर्सनल ग्रोथ, ये एक तरह से फ्यूल का काम करता है आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, और साथ ही आपको मोटिवेट करता है एक एम्बिशियस गोल सेट करने के लिए, अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। विदाउट कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट मी, फियर ऑफ फेलियर कैन होल्ड अस बैक फ्रॉम रियलाइजिंग आवर पोटेंशियल। दूसरा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस से ऑफकोर्स आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी ग्रो होती है। व्हेन वी बिलीव इन व्हाट वी से एंड व्हाट वी स्पीक, अदर्स आर मोर लाइकली टू लिसन एंड रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। आप बताइए, आपके अंदर सेल्फ डाउट है? अगर है तो उसे हटाकर उसको कॉन्फिडेंस से रिप्लेस कर दीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी। और साथ ही मैं सुनाऊंगा आपको कुछ जबरदस्त गाने, तो आपको क्या करना है, आपको बने रहना है मेरे साथ और सुनते रहना है वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं हमारा प्राइम शो बी रिलैक्स और आज हमारी बात चल रही है आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस पर। दोस्तों, तो मैं आपको कुछ वेरियस रोल्स बता रहा था कॉन्फिडेंस की। आपकी लाइफ उसमें अगला नंबर आता है करियर सक्सेस का। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी वो की है आपके सक्सेस के लिए। कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू टेक एन लीडरशिप गोल्स और रोल्स, एक्सेप्ट चैलेंजेस एंड एक्सेल इन द करियर्स। क्या आप समझे? इमोशनल वेलबींग में भी हेल्प करता है। जितना आत्मविश्वास हमें हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करता है, उतना ही आपकी पर्सनल लाइफ में भी, आपके इमोशनल वेलबींग में भी, आपके स्ट्रेस कम करने के लिए, एंग्जायटी कम करने के लिए, हर चीज में हेल्प करता है। व्हेन वी ट्रस्ट इन आवर एबिलिटीज वी नेविगेट लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स एंड इट्स रेजिलियंसेस। चलिए बात करेंगे आप कैसे कॉन्फिडेंस को कल्टिवेट कर सकते हैं या यूज कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाऊंगा कुछ सुपरहिट सॉन्ग्स। तो सुनते रहिए मेरे साथ वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक वन मोर टाइम। दोस्तों उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। बात करते हैं हाउ डू यू कल्टीवेट, ये बात वापस ले रहा हूं लाइन। दोस्तों बात करते हैं हाउ डू यू कल्टीवेट कॉन्फिडेंस, कैसे हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक्स, खुद से बातें कीजिए, मतलब अपने जितने भी नेगेटिव थॉट्स है उन्हें निकाल कर उनको पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दीजिए। डोंट से आई कांट डू दिस, से आई कैन डू दिस, लर्न फ्रॉम दैट एंड इम्प्रूव। सेकेंड, सेट अचीवेबल गोल्स, ब्रेक डाउन योर गोल्स इंटू स्मॉलर अचीवेबल steps, celebrate each success along the way to boost your confidence. तीसरा, visualize success, ये बहुत ही important part है। दोस्तों आजकल आपने एक शब्द का नाम सुना होगा जिसको हम लोग कहते हैं manifestation। Of course, next episode या अगले कई episodes में मैं आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दूंगा, पर manifestation आजकल बहुत popular है, जिसमें क्या होता है आप लोग ऑलरेडी ये विजुअलाइज कर लेते हैं कि भैया मैं एक सक्सेसफुल आदमी बन गया और उस लाइफ को धीरे धीरे आप जीने लगते हैं। ये क्या है, ये है manifestation। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले लेंगे हम एक छोटा सा सॉन्ग ब्रेक। तो आपको क्या करना है, सुनते रहना है मेरे साथ वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

दोस्तों कुछ और टेक्निक्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। आप अपने फेलियर्स को एक तरह की लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के नजरिए से देखो। कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग फेलियर्स बट अबाउट बाउंसिंग बैक स्ट्रॉन्गर। प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, खुद को काइंडनेस से ट्रीट करें। अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो भी गई है तो इट्स फाइन, फॉरगिव योरसेल्फ। ट्रस्ट मी, व्हेन यू एक्सेप्ट योरसेल्फ यू ग्रो इन लाइफ। कॉन्फिडेंस थ्राइव्स इन एन एनवायरमेंट ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। दोस्तों आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो आपको आपके लाइफस्टाइल बदलने से आएगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर आएगी। अगर आप कुछ अलग करना है, आपको अलग करना चाहते हैं, तो आपको आपके अंदर पहले चेंज लाना पड़ेगा। चलिए नाउ आई एम गोना प्ले सम सुपर हिट सॉन्ग्स। प्लीज सुनते रहिए हमारे साथ, आप सभी का फेवरेट शो बी रिलैक्स।

हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। आप सुन रहे हैं वेनू ध्वनि 90.4 KLE कनासू, और जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं आप सभी का प्यारा दुलारा रेडियो दोस्त और होस्ट आरजे आयुष। एक फ्रेज मैं आपको बताता हूं जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस इन एक्शन, जिसका मतलब है टू सी द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। कंसिडर सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। मेनी अकम्प्लिश्ड इंडिविजुअल्स क्रेडिट देयर सक्सेस टू देयर अनवेवरिंग बिलीफ इन देमसेल्फ्स। एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अपने स्टार्टअप्स को ग्लोबल कंपनीज में बदल दिए और रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, उनका ड्राइविंग फोर्स था द कॉन्फिडेंस। आप किसी से कम नहीं है, आपके पास भी वो पोटेंशियल है जिससे आपको पहचानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो टेक्निक्स मैंने आपसे शेयर की आप वो यूज कर सकते हैं, बस खुद पे बिलीव रखें, अपने एक्शंस अपनी लाइफस्टाइल्स को थोड़ा सा बदलिए, आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्ट हो जाएगा। और साथ ही बने रहिए 90.4 KLE कनसू पर।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 FM के LE कनासू और हमारा शो बी रिलैक्स चल रहा है। और आज हम बात कर रहे हैं योर इनर पावर के बारे में, यानी कॉन्फिडेंस के बारे में। दोस्तों, आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ को इनसाइड आउट बदल सकता है। आज के इस एपिसोड में हमने बात की दैट कॉन्फिडेंस इज द की टू अनलॉकिंग योर फुल पोटेंशियल। इट्स अ क्वालिटी दैट कैन बी कल्टिवेटेड एंड रिफाइंड थ्रू सेल्फ अवेयरनेस, पॉजिटिव थिंकिंग एंड रेजिलियंस। और इसको समझ कर और अपनी लाइफ स्टाइल में डालकर अपनी लाइफ में आप अचीवेबल, सक्सेसफुल और हैप्पी बन सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। सो बिलीव इन योर सेल्फ, एम्ब्रेस योर पोटेंशियल एंड लेट योर कॉन्फिडेंस बी द गाइडिंग लाइट ऑफ योर जर्नी टू सक्सेस। दिस इज योर होस्ट आरजे आयुष साइनिंग ऑफ। जल्द मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ ही सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनासू। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट इवनिंग अहेड।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

के एल ई कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धोनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ओनली 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धोनी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरू थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसु पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

रंगभूमि 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

0: प्यारे,
1: जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

पूरी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

प्यारे, जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

रंगधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारा हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेनू थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।